रहे तोलब में सवार सब है पयादा मिसले हो पार में रहे तोलब में सवार सब है पयादा मिसले हो पार में तेरे गुलिस्तान में सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं तेरे गुलिस्तान में सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूं रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब तो मशगूल कार में हूं हर दम करूं मैं ऐ मेरे बारी

कौनैन में शोहरत है सरकार दो आलम की, कौनैन में शोहरत है सरकार दो आलम की, छाई हुई रहमत है सरकार।

छाई हुई रहमत है सरकार दो आलम की। ता हश्र रहे या रब महफूज हवादिस से, ता हश्र रहे महफूज, ता हश्र रहे या रब महफूज हवादिस से, दिल में जो अमानत है सरकार दो आलम की। ओ अल्लाह, दिस अमानत विच इज़ इन माई हार्ट ऑफ नबी अलैहिस्सलाम, इट मस्ट रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द फितनास ऑफ द टाइम्स।

जन्नत है तू जन्नत है, सरकार दो आलम की। कहते हुए मरकद से महशर में हमीद आए, मुझको तो जरूरत है सरकार दो आलम की। हमीद सिद्दीकी लखनवी कंपोजर, इसे महशर कहते हुए मरकज से महशर में हमीद आए। As soon as we get up from our graves on the day of Hashr, we come with one thing on our lips, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, we are in need of your shafaat. We are in need of your shafaat. We are in need of your intercession on behalf of us sinners.

छाई हुई रहमत है सरकार दो आलम की। ए अर्ज़ मदीना काश आंखों में तुझे रख लूं,

जन्नत है तू जन्नत है, सरकार दो आलम की। ऐ ज़ाहिरे खुश किस्मत, रोजे की जियारत भी